डॉक्टर, मैले उसको ओइल पावर जोगाउन धेरै ट्राई गरिसकेँ, म हार खाइसकेँ। आई एम सो सरी डॉक्टर।

0: हाय बेबी।
1: एयरपोर्ट मत आओ, मैं नहीं आ रहा।
0: नहीं आ रहे मतलब?
1: मींस आई एम नॉट कमिंग बैक, आई कांट।
0: आई लव यू।
1: जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उससे करता हूं।

सॉरी सर, वो बॉटल जिस पे भी रुकती है उसे गाना पड़ता है, बट इट्स ओके। आप

0: Choice FM 90.4 MHz.
1: 70.
2: Nazdiko. मेरा नंबर डायरेक्टली बात करना, डांट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ओके, वैसे भी नंबर मिल गया तो डेस्को की तरह बिहेव मत करना. आई कैरी पेपर स्प्रे.
1: ओके.
2: बाय द वे नेहा,

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2420-670, मोबाइल नम्बर 98465656।

0: चॉइस एफएम 90.4 मेगाहर्ट्ज
1: वेस्टार डिजिटल एंटरटेनिंग द नेशन।
2: शिवम सीमेंट क्वालिटी को मामला मा नो कॉम्प्रोमाइज।

0: गोर्खा जिल्लाकै विश्वासिलो सुन चाँदी पसल
1: नारायण सुन चाँदी पसल बैंक रोड बस पार्क गोर्खा। फोन नम्बर 064-2670, मोबाइल नम्बर 98-460-56-238।